चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वा

कि ये सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए। कोई साधारण आदमी नहीं सन, उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखों में ही होंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत किते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह होंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वाल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहब जी उस आदमी नूं जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुता पिया सी, उस नूं वैरागमय नींदर तों जगाउण आए। ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तो पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी, अते इस तो पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है, इस नूं वैरागमय नींदर तों जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बने, उसका नाम नारायण गिरी पै गया।

अपने आश्रम विच पहुंचे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

सफाई सी, उच्चता से इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया, वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता। जिस वक्त माधोदास बैरागी ने

एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, वो मरी, वो दे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए, ता मैं वैरागी हो गया। ता गुरु साहिब ने कहा।

अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जी।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यग दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग क्यों नसन लग पए जिव प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने

आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी

मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादे दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और सत साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है, गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा।

0: संत सिपाही दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर शहनशाह बाजां वाली सरकार शेरां दी कौम दी नींह रख रहे ने खालसा पंथ दी नींह ते मुखों वाक फरमाया जिन्नी देर दुनिया कायम रहेगी ए कौम शेरां दी कौम सदाएगी सिंह सदा चढ़दी कला च रहणगे। गुरु साहब ने कौमां मजहबां दा वितकरा खत्म कीता ते कहा खालसा मेरा रूप होवेगा।
1: वेदां विच कहानियां

सिख का अर्थ ये है भी सिखी सिख्या लैन वाले नु सिख फिर जड़ा हर वेले सिखदा रहे ओ सिख सिख नाम ही उसे रहे जो हर वेले सिखदा है। बाबा जी बख्शिश करदे सन बचना द्वारा सिख माया धारी हो जाए तभी सिख जे राजा महाराजा बन जाए तभी सिख जे संत बन गया तभी सिख सिख की सिख भाई गुरु की सिख्या सिख आखो श्री वाले सिख नाम ही विद्यार्थी का सिख का अर्थ स्टूडेंट क्योंकि सीखने वाले में कुछ मिलता है जरा कहता मैं सिख लिया है उन्हें कुछ नहीं सीख बाणी चाहे सो अजान कहे मैं जानना वो अजान जिस जड़ा कहता मैं जान ले कहती सारी दुनिया काट न किनी कहाया सब कहते हैं पर पता उस वेले लगता है जिस वेले वेखी मन की खारिज कितनी वस्तु है कोई है ही पटारी कि खाली पी है सकनी पी तो जिसने जाने वो कहता नहीं सो अजान कहे मैं जाना जानर हार न छाना रे काहे रे बकबाद लायो नामदेव जी कहते हैं पंता मुखातब करके काहे रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छुपायो कहते उन्होंने कहने की लोड़ ही नहीं जड़ा कहता ओदे कोल कुछ कह कबीर छूछा कट बोले कह कबीर छूछा कट बोले परया होया सो कबू ना दो तो जेड़ा कहंदा मैं जाने है उन्हें कुछ नहीं जाने तो जिसने जाने है वो कहंदा तो सिख ने सदा ही जानना गुरु का सिख जो है बाबा जी बचन करते सन भाई सदा ही सिखदा रहो फिर की सिख केड़ी सिख्या सिख गुरु की सिख्या सिख गुरु की हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सदगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली गुरु की चाली चाली जे तू गुरु का सिख है तो गुरु की चाली चाली जे तू गुरु की प्रसन्नता लेनी है तो गुरु की चाली चाली फिर गुरु की चाली केड़ी है तो हजूर फरमाते हैं।

गुरु सिख का जीवन कहा करना, जो गुरु का हुक्म है वो करना, जो भी बाणी नाल जुड़ना, सिमरन नाल जुड़ना, श्वास श्वास जपना सतनाम, जिन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार अपने मन नूं सिमरन च जोड़िया। प्यारी सात संगत, फिर वाहिगुरु करदियां करदियां सिमरन करदियां करदियां ऐसी अवस्था बन जाती है, पहला वाहिगुरु रसना ते वसदा, फिर मन च वसदा, फिर रोम रोम च वस जाता है। खुश वाहिगुरु शब्द जो है गुरु का मंत्र, रोम रोम च वस जाता है। बाणी च आउंदा है गुरमुख रोम रोम हर प्यार, जेडे गुरमुख न जिन्होंने गुरु नु मुख रखिया, जिन्होंने मन नु मुख नहीं रखिया। जे मन ने कहा भी ये काम कर ले, चलो कर लेंगे, मन तो गलतियां ना पुतले, मन दे आखे नहीं लगना चाहिए। जे मन ने कहा भी उन्हें दाढ़ी कटी है तू भी कट लिया खुश रही हो, ये भी कुछ सीखी, ये भी कुछ सीखी दा प्यार नहीं। मन दे आखे नहीं लगना, मन नु जितने वो असली सूरमा बहादुर ही, जिन्हें मन नु जिते जरा मन दे मगर भजा फिरदा है वो कहदा सूरमा। भाई साहब जी लिख लेन, मन वैरी नु जिसने जितया इस बादशाह जित जाता, सूर वीर वरियाम न कोई जिसने तैनू दिल विच जाता। इनू जितने इसते कंट्रोल करना, वो सूरमा जिसने मन ते कंट्रोल किया, जरा मन दे मगर लग गया, मन तो गलतियां का पुतल, मिनट मिनट बाद अपने वास च ही नहीं रहा। असं इतने बैठे हाँ देसा दसात्र मन सैरां पे करता है, वो जिया थावां तो भी हो आंदा है, जिड़िया थावां ने वेखिया ने कोई ना कोई सरूप बना लेना अपने आप। तो मन नूं खिंचना है अपने वाल, आखो श्री भाई, मन दे मगर नहीं खिंचया जाना, इहनूं आपणे वाल खिंचना है भाई, इहनूं मित्र बना के इस तों कम लेना है। मन नूं मुख नहीं रखना, गुरु नूं मुख रखना, गुरु नूं कहा है। जिन्होंने गुरु नूं मुख रखिया प्यारी साध संगत, उन्हां दे रोम रोम दे विचों सिमरन दी आवाज आउंदी, रोम पहला सिमरन रसना ते आके वसदा, रसना द्वारा मन ते, फिर मन विच वसिया, फिर तन विच वस गया, मन विच वसिया फिर तन विच वस गया, फिर जिसले तन विच वस जांदा है सिमरन, फिर तन दे उत्ते 7 करोड़ रोम हन, शरीर दे उत्ते 7 करोड़ रोम हन, फिर एक रसना वाहिगुरु नहीं जपदी, 7 करोड़ भी नहीं जपिया जांदा है श्री वाह। ये तेरी वाहे गुरमुख की अवस्था है, गुरमुख रोम रोम हर त्याग, गुरमुख रोम रोम हर त्याग। आप करेंगे दर्शन पट्टी दे इलाके दे रहने वाले दो गुरु के सिख इक पिंड च रहेंगे, गुरु की बख्शिश हुई, पंजवें पातशाह के दर्शन कीते, मन धोता होया सी, चोली अड़के जाचना की थी, दाता जी बख्शिश करो विसरना ही दातार, अपना नाम देओ गुण गावा दिन रात, नानक जाओ नाम दी दात बख्शो। सचे पातशाह नाम, नाम पूरे गुरु तो मिलता है, पूरा गुरु कौन है, प्यार नाल आखो धन गुरु अर्जन, पूरे गुरु तो दात मिलती, नाम अमोलक रतन है, पूरे सदगुरु पास, सदगुरु सेवे लगियां कड़ रतन देवे प्रगाश। दोवां ने जाचना की, गुरु ने तकिया भांडा साफ है, नाम वस्तु रख दी, गुरमंत्र लेके अपने घर आ गए, फिर अभ्यास शुरू कर दिया।

अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेगा इना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है पर आपा भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करेंगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राजकुमार दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपा उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद। भगत अमरीक नो अभय पद की प्राप्ति हुई। जन्म मरण दे चक्कर तू ओरहत हो गए। राज पवीखन अदक करियो जिस तरह पवीखन नो श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता। क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इनु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता है।

राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा, ते फेरे तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़े। ते दुर्वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

सो गिरही सोदास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यह है कि असी अपने आपे की खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साडे वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साडे वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असी बैठे ईमानदारी दे नाल कि असी अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं है, कि असी अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गवाई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नू लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नू पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहिंदे हन सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, कहिंदे भी तू कौन है, कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है। बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम।

अपने आपे नूं पछानना ही नाम दी प्राप्ति है। कोई पूछे नाम दी प्राप्ति की चीज है, नाम की है? अपने आपे नूं पहचानना ही नाम दी प्राप्ति है। और अपने आपे नूं पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नूं असल तौर ते प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नूं ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनूं अपनी असली हस्ती का पता लगेगा कि वह कितनी महान है, वह प्यार करन दे योग है। और फिर उसनूं ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उत्थे जाके ड्युअलिटी, द्वैष, मेर तेर सब खत्म होएगी जदों अपने आपे की पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नूं इस भुलेखे च, इस टपले च, इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिए कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए, इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन गृहस्थी का भी होना चाहिए है। ते ओ ना हो आपनु नहीं बुझिया, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाड़ा है, कोई भी चाहे है। जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा, अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन काजी मुल्ला होवे शेख, कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो, कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे।

देहरा मसीत सोई पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इना नु एक ही समझो क्योंकि जेड़े इना विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तो हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले हो

अपने मन विच एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां ने, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी, परमेश्वर ने

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो

दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहा है, पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हैं।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे

निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते।

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पे, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्होंने अपना की काम बना लिया, राजभाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधर सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देण। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा देना एक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया, रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया, नहीं। भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

सारी पौड़ियां दा मकसद इस उपदेश दा मकसद के जेड़े लोग अपने धर्म नूं ठीक समझ के दूसरे धर्म और दूसरे धार्मिक ग्रंथां दा अपमान करदे हन ओ अपने धर्म दा भी

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़

गुरु साहबा ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई, आपां भी महापुरशां दे राह ते चलिए और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।

कीड़े हन जे किसे नू कोई लड़ जाए तां उदे मंत्र उतारन दे कई साधन हन, उदी जहर उतारन दे कई साधन हन। इस धरती ते ऐसे मंत्र हन जो सप दी बिच्छू दी होर

तो जिन्हों ने भी सच्चे दिलों उस परमेश्वर की भगती की उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने अपनी गोदी विच बिठा लिया। जुगो जुग अटल हो गए, अमर हो गए। भगत रविदास जी नू बचपन तो ही भगती भाव दे नाल परमेश्वर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां होईयां सन। आप दा जन्म बेशक चंबियारां दे घर दा सी, पर निरंकार दे घर विच कोई जात पात दी पुछ नहीं, उत्थे तां गुणा दे पुजारी हन, गुणा दी पूजा होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जात नहीं पुछी जानी। हजूर दी बाणी कहती है, सब ते उत्तम गणो चंडाला, नानक जह मन बसै गोपाला। जे जात दा नीवा है ते उदे मन विच वस गया है श्री वाहिगुरु, ता ओ सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम जाति किस दी है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उच्ची जाति किदी है? जेड़ा भाई सास ग्रास मालक

ब्राह्मण कुछ देना चाहुंदा सी पर भगत जी कहन लगे ना महाराज धन भाग हन आप दी सेवा मिल गई है मैनू इतना ही काफी है। ब्राह्मण ने हठ कीता आख्या भाई मैं तो कुछ ना कुछ जरूर देना है ते एक कसीरा एक पैसे का तीसरा हिस्सा जो है वो कसीरा क्या करते सन उसनू ब्राह्मण देना चाहता है भगत जी लै नहीं रहे जदों वेख्या भाई ब्राह्मण हठ नहीं छड़ रहा तां ब्राह्मण नू कहा अच्छा तू यात्रा करन जा रहे हैं कुंभ ते गंगा इशनान करन चले हैं आ कशीरा मेरा गंगा दी भेटा कर दे उचारण करो श्री पर एक गल चेते रखी जे आप गंगा हाथ कड के बाहर मंगे ता देवी नहीं ता एवें ना दे दई किते ए भगत दी मजूरी है उचारण करो श्री पावनी भगत पाए कौड़ी अगर पाग राखे ताहे गुरु सर्व ने दान दान देते हैं हक हलाल दी किरत होवे ते उदे विचो गुरु दी हजूरी विच पेटा कीती जाए ओ करोड़ा रुपया दे बराबर है उचारण करो श्री क्योंकि वो ता तेरी भावना दा भुखा है ओ ईश्वर पदार्थां दा नहीं किसे होर वस्तु दा नहीं गोविंद भाव भगत का भुखा वो तो तेरी भावना वेखदा कि तेरे अंदर कितना कु प्यार है। ब्राह्मण जदों गया कुंभ दा मेला वेख्या यात्रा कीती इशनान करन लगा गंगा विच ते कशीरा अपने हाथ विच रख लिया।

जरूर होवेगा वह भी मैनू लिया के दे उचारण करो श्री वाहिगुरु। राजे ने ब्राह्मण नु बुलाया, पहला तो ना नुकर की ब्राह्मण ने, ते फिर सचो सच दस दिता भाई मैं ता भगत रविदास दी भेटा लै गया सा गंगा दी। गंगा ने हथ कड़ के ओ भेटा लै ली है, उदे बदले आ कड़ा दिता है। मैं दे नाल दा दूसरा नहीं लिया सकदा, मैं लोभी हां, मैं सजा दे लायक हां, मैं एक ब्राह्मण होके इतना नीच विचार कीती है, सोच कीती है, कम कीता है, मैनू बख्शो। हां मैं बेनती करदा हां भगत जी नू जाके शायद ओ इहदे नाल दा कोई कड़ा दे देन। तां ब्राह्मण भगत रविदास जी दे पास आके नमस्कार करके भगत जी दे चरण पकड़ ले, भई मैं लोभी हां, जो गंगा ने तुहाडे लई भेटा दित्ती सी मैं लालच विच आके

सचो सच गल सुनी। राजे दी कारवाली जिदा नाम राणी चाला सी, उसने भगत रविदास जी नू अपना गुरु मन के उना कोलो दीख्या लई, उपदेश लिया। उचारण करो श्री जदों आके उपदेश लिया, क्योंकि आप बनारस रहिंदे सन भगत जी, ते जितने ब्राह्मण सन सारे ही नाराज हो गए, भाई वेखो उच्च कोटि दे उच्ची कुल वाले ब्राह्मणा नू छड़ के राणी चाला एक चमार नू गुरु धारण करके ते उपदेश लै गई है। वेखो कैसा समा आ गया।

काल है जो पहले एक काले भी हृदयांतर रूपक ते सुलभाग भी चाहेगा, दूसरी बारी तीन ताल ते सुलभाग भी चाह के फिर हृदय स्थाई देते मुकाव होगा। हृदय यह भी लय जड़ी है एक दूसरे के नाल मिलनी चाहिए है, पड़ताल एक खास विशेषता होंगी है।

निर्धन को पलिए निर्धन को पले निर्धन को हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवा वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा का ना है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे बीर बार सर्वन कीता है केवल बोल के लंग दे हैं आज पंजवा निर्धन नू पालना मारा जी सेवा लें पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने ओ भी निर्धन नू पालना है साथ संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल